तीनों पुरुष और पशुओं की दुनिया च, पक्षियों की दुनिया च, कीड़े मकोड़ियों की दुनिया च, वो अपने ढंग नाल इस जरूरत नू पूरा करते ने। लेकिन सूक्ष्म तल भी है, नारी का हिरदा भी है, पुरुष का हिरदा भी है। स्वाभाविक तल ते देखिए कशिश विपरीत दी है, देवी गुणा नू लईए ए भी नर ते मदीन देच वंडे पैण है। जे भक्ति नारी है तो ज्ञान पुरुष है। गुरबाणी ने ज्ञान नू पुरुष आख्या है, भक्ति नू नारी आख्या है। निज भक्ति सीलवंती नार, रूप अनूप पूरी आचार, जिचर वसी पिता के साथ, तिचर कंद फो फिरे उदास, कर सेवा सतपुरख मनाया, गुर आणी घर में ता सर्व सुख पाया। तो भक्ति नो नारी आख्या है। ज्ञान राव जब सेजे आवे तो नानक भोग करे, ज्ञान नो राव आख्या है, पुरुष आख्या है। अगर गौर नाल देखिए तो तर्क प्रधान है पुरुष के अंदर, भाव प्रधान है, भावना प्रधान है, श्रद्धा प्रधान है स्त्री के अंदर। मन का टिकाओ भाव नाल होंदा है, मन नू सूझ बूझ ज्ञान नाल मिलती है, तर्क नाल मिलती है। तर्क स्त्री के अंदर अधूरी है, पुरुष अधूरा है। भावना पुरुष के अंदर अधूरी है, स्त्री अधूरी है। अस्थूल जगत ते जद ए अधूरे ने, नारी दे अंदर पुरुष, पुरुष दे अंदर नारी, तो सूक्ष्म दुनिया भी अधूरी है। या इंज कह लो, ज्ञान तो हीणा हिरदा है नारी दा, भक्ति तो हीणा हिरदा है पुरुष दा। पुरुष दे अंदर अगर भावना है, भक्ति है तो अधूरी। स्त्री दे अंदर अगर ज्ञान है, तर्क है तो अधूरा। जिथे अस्थूल जगत संपूर्ण होने लई तड़पदा है, उथे सूक्ष्म दुनिया भी अपने तल ते बहबल आउंदी है। कल्ली स्त्री इकल्ला पुरुष संसार नहीं चला सकेगा। परिवार दा चलना ही संसार दा चलना है। अगर स्त्री पुरुष नो अलग कर देइए, परिवार अलग हो गया, एक दिन संसार अलग हो जाएगा। इस वास्ते स्त्री दे या पुरुष दे त्याग दे उते जिहड़े धर्म खड़े सन, वो कोई पायदार नहीं सन, ज्यादा चल भी नहीं सके और उना नाल ज्यादा जुड़ भी नहीं सके। वो समूह दा धर्म नहीं सी, सारियां दा धर्म नहीं सी, वो कुछ लोगां दा हो सकदा है। जैसे महात्मा बुद्ध ते स्वामी महावीर त्याग ते खड़े ने, ये सारियां दा धर्म नहीं हो सकदा। सारे ही त्याग कर देने स्त्री दा, और स्त्री त्याग कर दे पुरुष दा, तो परिवार खत्म हो। जब परिवार खत्म होया है तो संसार कितने दिन तक चलेगा, इस समाज कितने दिन तक चलेगा, आखिर ये वक्ती खेट सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो प्रकृति संसार नू चलाए मान रखना चाहती है, ये ताई चल सकेगा परिवार चलन। परिवार चल रहा है तो संसार चलेगा, और परिवार चलता है स्त्री ते पुरुष नाल। पति पत्नी दे सुमेल तो नानके दाद के सौरे जन्म लेंदे ने। रिश्तियां दी ये तीन प्रणालियां दा केंद्र पति ते पत्नी ने, ये रिश्ता टूट जाए ना नानके ना दादके ना सौरे। तो ये परिवारिक जीवन संसारिक जीवन स्त्री ते पुरुष दे सुमेल तो चलता है। स्त्री दे अंदर जो स्थूल तल ते अधूरा पुरुष है, विवाह दे नाल उसकी संपूर्णता हो जाती है। और पुरुष दे अंदर जो अधूरी स्त्री अस्थूल तल ते, निकाह विवाह आनंद कारज इसनु संपूर्ण कर देंदा है।
लेकिन सुख

मैं अज उस पंक्ति दे अर्थ प्या करनू के तन मन काट काट सब अर्पी विच अग्नि आप जलाई। कह लगा सतगुरु अज मेरे तो देखिया नहीं जांदा, सतगुरु दे नेत्र जेड़े ने इन्हां दे उपर फलूवे हो चुके सन, सारिया जेड़े ए पवित्र चरने ए अग ने बिलकुल चमड़ी नू छाड़ दिता है। कह लगे हड्डियां नजर पी आउंदियां ने जिमें चौंकड़ा मारिया, जेड़ा तन उस लोह दे नाल लगा है ओदा मास लोह ने खिंच लिया है, ते जिथे जिथे गर्म रेत पई पैंदी है सतगुरु दे तन विचों फलूवे पे निकलदे ने। साईं कहिंदा दातिया मेरे तो झल्या नहीं जांदा, जे तू कहें ता मैं इस लाहौर ते दिल्ली नू तबाह कर सकना। ते सिख विद्वान लिखदा है खजूर ने अगो बड़े प्यारे बचन कहन लगे साईं जी मेरे तन दे फलूवे ना तको, तुसी तपदी रेत नू ना तको, तू पुछना एनी गर्मी विच। हजूर कहन लगे अग भी तपदी पई है, लोह भी तपदी पई है, सूरज भी तपदा पिया, रेत भी तपदी पई है, जहांगीर भी तपदा पिया। जहांगीर शहीदी का हुक्म दे के कश्मीर नू चला गया, बैठा ठंडे इलाके विच पर तपदा ओही पियाई। देख का अग तपदी है, रेत तपदी है, लोह तपदी है, ए सूरज तपदा, मुर्तजा खां तपदा, चंदू तपदा, जहांगीर तपदा पिया। इन्ने तपदे हुए मेनू तपाना चाहते ने, पर इन्ने तपदे होया दे विच बैठा भी गुरु अर्जन देव ओदे अंदर नू कोई तपा नहीं सकिया। तन तपदा पर अंदर ठंडे, साहब ने उथे जेड़े बचन कहे उस अदीब ने अपनिया पंक्तियां कहिया। ओ कहिंदा चार तरफों अग बरसे, सेक सी तन साड़दा, छाले छाले हो गया जुसा सची सरकार दा, साई मिया मीर डिठा खाल आ जद यार दा, ओ हो व्याकुल रोक पिया चीक ते ताही मार दा। सुन सतगुरु क्या मिया छोड़ो प्रीति चाम से, क्या हुआ तन जल रहा हम शांत हैं हर नाम से। मेरे अंदर ता ठंड है, अंदर दी ठंड नू कोई खो सकता है। ओथे गुरुदेव नू जदो तत्ती तवी ते बिठाया खजूर ने एक गल कही, कहन लगे साई मिया मीर इन्हां दे कन्नां विच एक आवाज पहुंचा दई, अज इन्हां दियां उच्ची हवेली दियां दीवारां ने मेरे तन नू रोकन दी कोशिश कीती है, मेरी आवाज नू दबान दी कोशिश कीती है, पर मेरे तत्ती तवी बहण तो बाद जेड़ी खलकत ने नवी करवट लैनी है ओदे सामने जहांगीर दी सल्तनत ने टेक नहीं सकना। मेरे नाल मेरी आवाज नू तां ए देग विच उबाल के बंद करना चाहते ने, पर मेरे तो बाद जदो हर गोबिंद ने कृपान पकड़ी ते ऐस सल्तनत ने मेरे पुत्र दी कृपान अगे खलो नहीं सकना। एदा मतलब साहब दे अंदर दी ए भावना नू उस अदीब ने प्रगट किया। साहब ने कहा मेरी सदा को दबाना तो मुमकिन है, ए ठीक है मेरी जीव दी आवाज तू अंत बंद कर देगा, मेरी सदा को दबाना तो मुमकिन है, मगर बदलते वक्त की रफ्तार कौन रोकेगा। फसीले आतशो आहन बहुत बुलंद सही, भावे अग दियां लपटां उच्चियां ने मगर हयात की ललकार कौन रोकेगा। मेरे ख्यालों की परवाज रोकने वालों मेरे हर गोबिंद की तलवार कौन रोकेगा। किसे कुल ताकत है ओदी तलवार सामने खलो जाए। गुरु अर्जन देव नू तत्ती तवी ते बिठाण तो बाद कह लगे हवेली विच लैके गए ने। भाई गुरदास ने अपनी पौड़ी अंदर एक श्रद्धा दी फुल भेट कीते ने गुरु अर्जन देव नू, भावे उन्हां ने रमज भरे वचन कहे ने, कहिंदे ने साध संगत आओ उस गुरु अर्जन देव तो कुर्बान जाइए जिस परोपकारी गुरु ने तुहानू गुरु ग्रंथ साहिब वर्गा सतगुरु दिता, जिस परोपकारी ने तुहानू हरिमंदर साहिब वर्गा केंद्री स्थान दिता, जिस परोपकारी ने तुहाडी झोली दे अंदर कीर्तन दी दात पा दिती। भाई गुरदास कहिंदा है मेरे गुरु अर्जन देव जी अज मैं तकना वा जदों तेरे जीवन नू तेरी प्रीत ता निभ गई। हजूर ने बाणी विच भी वचन कीता ना, कह लगे सेवक की ओड़क निभ गई प्रीत, जीवत साहिब सेवियो अपना चलता राख्यो चीत, जिउंदे भी चेते कीता तुरदियां भी प्रीत निभ गई। ते वाकी मेरे साहिब जी जेड़े तुसी वचन कहे रते सही जे मुख ना

जन नानक नाम दीवान है, हर तान सताने हर संतानो खोर थाओ नाही, हर मान निमाने जन नानक नाम दीवान है, हर तान सताने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मान योग शहीद श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाए मान होए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों, आपने सतगुरां दे इलाही बचन कीर्तन राही सरवण कीते ने, जिथे आपां सतगुरु गुरु रामदास महाराज उन्हां दे पावन पवित्र बचना दी विचार रोजाना करदे आ रहे हैं। उथे अज छठम पीर मेरी पीरी दे दाता अकाल तख्त साहिब दे सिरजनहारे सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी दा आगमन पुरब है। ओ सतगुरु जिसने जदो जालम प्यार नाल ना समझे, कुर्बानी देन तो बाद भी ना समझे, ते उसनू कृपान दे मुठे ते हाथ रख के उनू समझाण दा एक तरीका सानू दिता। उस सतगुरु दा अज आगमन पुरब, आओ गुरु रामदास दे बचन ने ते इस परिवार अंदर गुरता गद्दी गुरु रामदास दे वेले तो ही आई। ताई तां भाई गुरदास ने कहा सी, जान ना देशां सोढ़ियां होरस आजार ना जरे अजावे। आओ सतगुरु दे पवित्र बचन और गुरु इतिहास दी विचार आपां ने करनी। समा थोड़ा बहुत ज्यादा हो सकदा है, कृपा कर दिया जी। सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज आप कृपा करके विच वरतो, अपने पवित्र बचना दी विचार करा लो। करो कृपालता गुरमुखो, बड़े प्यार अदब दे नाल उचारण करो जी, सतनाम श्री वाहे गुरु जी। करो बख्शिश गुरमुखो, फिर उचारण करो जी, सतनाम श्री वाहे गुरु जी। सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी दे परसों आपा ने बचन उचारे सन, विचार कीती सी। कोई गावे रागी नादी बेदी बहु भांत कर, नहीं हर हर तीजै राम राजे, जिना अंतर कपट विकार है तिना रोए क्या कीजै। थोड़ी जी तवज्जो देनी अज दे संत नूं, अज दे बचन दी व्याख्या कर ली, सानू पिछे झात जरूर मारनी पैगी। ते अर्थ उदन स्पष्ट कीते सन कि जेड़ा बंदा अंदर कपट रखदा है, अंदर ओदा अत दा मैल है, ते बाहरों भावे ओ रागां विच गा के लोकां नूं सुनाए, ओ कई तरह दे नाद वजा के संख वजा के कहे मैं प्रभु दा भगत हां, भावां ओ अनेकां ग्रंथ पढ़

जे अज ए कहने के बाबे बुढ़े को अरदास नहीं कराई गुरु समर्थ है, फिर समर्थ गुरु गद्दी भी एक दूजे एक तो दूजे दे सकता है, पर नहीं जिदन गुरु नानक गद्दी एक शरीर तो दूजे शरीर भी जोत प्रवेश कर दिए ते विच खलोता बाबा बुढ़ा ही हुंदा है। सब तो पहली नमस्कार बाबा बुढ़ा करदा है, कह लगे गंगा जे पुत्र दी दात चाहीदियां ते बाबे बुढ़े दे कोल जा इंद्री जित सिखे, शब्दों दे लई वरते सन इंद्री जेती ओदे शब्द कदी झूठे नहीं। ते आ बीड़ साहब जिथे आपा जाने ए भाई लंगा चौधरी से उस इलाके का 3 लाख की जगीर से सलाना बड़ा तकड़ा सी, इन्हें यह कुछ कु खीसा गुरु अर्जन देव गुरु नानक दे घर नू दिता सी, इत्थे सतगुरु दियां मझां सन ते बाबे बुढ़े ने जदों बजुर्ग हो गए उदों भी इत्थे टिके रहे, अक्सर वह पशुआं की संभाल करनी इत्थे खेती करानी। कैसी निर्माणता उस सिख दे अंदर, कहन लगे ओदे कोल अरदास करा मेरा मालक भाग जरूर लाएगा। कहने माता गंगा जी गए आ ठीक शब्द रथ वाला भी वरतदे ने, भाजड़ पै गई पर मैं जेड़ी अर्ज मैं करनी है। माता गंगा जी गए ने उन्होंने अपने हाथ नाल प्रशादा तैयार किया है, इहदा मतलब कि एक सिखी का नमूना कहन पै करदे ने कि जो कुछ तू लोचना है जे पूरे सिख कोल भी अरदास करा ले ते मेरा गुरु कदी मोड़दा नहीं। दूजी गल नौकर बड़े सन लंगर पकाने वाले सिख बड़े ने, पर माता लंगर इस करके पकांदी है कि जे कुछ लैने ते अपने हथी सेवा करन दी विजाज सिख ले। आ बाबा फूला सिंह ने रणजीत सिंह एक बारी प्रसाद छकाया कर नौकरा चाकरा ने, ते बाबा जी ने अरदास कर दिती कि दाणा पानी गुरु दा टहल पानी तेरे सेवकां दी। ते पिछों रणजीत सिंह कहिंदा बाबा जी चुप करके एकांत विच, बाबा ही कहन लगे सामने गल कर बेखौफ ओ साधु। कहन लगे भी लंगर छकाया ते अरदास विच मेरा नाम नहीं लिया। असा लंगर छकाया, कहिंदा तू जिदन जमया ते अपने नाल अनाज नहीं लैके आया, रब ने भी तेरे मत्थे दा लिखिया तेनू दिता है, अपने हथा नाल तू लंगर वरताया नहीं तैयार नहीं किया, जिन्ना ने सेवा की अरदास भी ओदी होवेगी जे तू अरदास ता मैं कल तू अपने हथा नाल तैयार कर। कहिंदे ने राणिया ने आप लंगर तैयार किया अपने हथी चकाया, माता गंगा जी ने आप लंगर तैयार किया सिख तवारीख दे मुताबिक, अपने सिर ते लस्सी दा कुजा चाटी रख के मिठे प्रसादे रख के नाल एक गंढा प्याज लैके अचार लैके जदों गए ने, ते विद्वान लिखदे ने मैकालप ने बड़ी प्यारी गल की, ओ कहिंदा जदों सतगुरु दे ए महल माता गंगा जी बीड़ साहब दे नेड़े पहुंचे ने ना, ते बाबे बुढ़े दे हाथ दे विच दात्री सी, आ सौणी दा महीना चलदा पिया सी, कमाद दे छोटे छोटे अजे फसल जिहड़ी पुंगरदी पई है छोटा छोटा कैमा कमाद लहरांदा पे, अथों दा महीना जिक्र कीता सिख विद्वाना ने। कहन लगे 4 चफेरे हरियावल ही हरियावल है क्योंकि मीह पै के अजे हटदे ने, ते गुरु अर्जन देव दे महल गए ते बाबा बुढ़ा जी ने हाथ विच दात्री लैके खेत दे किनारे घा पै कढ़दे ने, एक सेवक नाल ने सामने माता गंगा जी तुरे आउंदे भेजे, उस वक्त कहन लगे बाबा बुढ़ा जी मां देख अज तेरे पुत्र ने सवेर दा कुछ नहीं सकिया, भुख नाल अंदर विलकदा पिया सी, इहनू कहिंदे ने मां जेड़ी मां पुत्र दी भुख नू समझ के ओहदे लई भोजन लै आवे ओही तां असली मां, सवेर दी भुख लगी सी लिया जे मेरे लई कुछ तैयार करके लियाईए। सथां नाल ओह लस्सी वाला भांडा लाया प्रसादे लए, उस वक्त मैकालप लिखदा माता गंगा जी हाथ जोड़ के खलो गए, कहन लगे साई वालियो तुहाडी पहुंच साई ताके, असलियत साहब ने बाणी विच मन्निया कि जां का मीत साजन है सच समिया, तिस जन को कहो कांकी कमिया, जां की प्रीत गोबिंद सिओ लागी, दुख दर्द भ्रम तां का भागी, ते जेड़े साई वाले ने ना जां का कहया दरगा चले, ओदी गल नू किन्ने झूठिया करने, सो किस को नजर लै आवै तलै, साहब कहने जो मांग है ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे, नानक दास मुख ते जो बोले इहा उहा सच होवे, सिख दा बचन कदी झूठा नहीं, खोवे पुगया खोवे पहुंचया।

साहब ने राम राय भेजिया ते जदो तोरन लगे ने ते एक गल कही सी गुरु हर राय साहब ने, बेटा तेरी रसना ते गुरु नानक दा निवास होवेगा, पर एक गल चेते रखी गुरु नानक दा बन के रही, तेरी रसना ते गुरु नानक बोलणगे। राम राय गए कहिंदे ने उथे पहुंच के इन्हां ने 72 करामातां दिखाईयां ने, केवल करामात नहीं उथे गुरु नानक साहिब जी दी बाणी दा शब्द अपनी जबान नाल चेंज कीता है, मुसलमान दी थां ते बेईमान शब्द वरत्या है। ते मेरे साहब ने कह दिता राम राय नूं कह दियो अज तो बाद मेरे घर विच ना आवे, जेड़े पासे मर्जी चले जाए, गुरु नानक दी बाणी नूं तब्दील करन वाला भावे जबानी तौर ते बदलदा है ओनू गुरु नानक दे घर विच कोई भी थां नहीं। बाणी दा अदब वधे। मैं अर्ज करा गुरु हर राय साहब ने फिर गद्दी 5 साल ते कुछ महीने दे ने गुरु हर कृष्ण साहब जी उन्हां नूं गुरु नानक जी दी गद्दी ते बिठा दिता। ते एक गल कही मेरे पुत्र ध्यान रखी, पहली गल दिल्ली जान तो संकोच करी, क्योंकि दिल्ली गुरु नानक दे घर विच पाड़ा पाना चाहती आ, उन्हां ने राम राय नूं भरमालिया, ते जे पुत्र तू दिल्ली चला भी गयो ते मलेश बिरती वाला औरंगजेब अपना शीश ते देना पै जाए, तन ता त्यागना पै जाए, पर औरंगजेब नूं दर्शन नहीं होदे। गुरु हर राय साहब तो बाद गुरु हर कृष्ण साहब गुरगद्दी ते विराजमान हुए ने। राम राय ने दावा कीता कि मैं गद्दी दा हकदार हां, पर इधर तेग बहादुर मेरे सतगुरु बाबे बकाले दी धरती ते टिक गए ने, सारा दिन भजन बंदगी करनी है, माता नानकी माता गुजरी जी सेवा तां करदे ने। गुरु हर कृष्ण साहब जी नूं संखेप विच अर्ज करा, औरंगजेब ने दिल्ली बुलाया है, साहब नहीं मन्ने, राजा जय सिंह आया है कहिंदा दाता संगत दे लई आ जाओ, साहब ने कहा संगत लई जिथे कहोगे मैं जाऊंगा, पर बादशाह दे सदे ते मैं दिल्ली बिलकुल नहीं जाना। 5 साल ते कुछ महीने की उम्र ते हुण सतगुरु 2 साल होर लंघे ने, जदो दिल्ली नूं तुरे ने सिख संगतां नाल ने, साहब ने रोपड़ तो पिछे संगतां नूं तोर दिता है, आप दिल्ली पहुंचे ने, जय सिंह दे बंगले विच निवास कीता है। औरंगजेब ने तरले लाए ने कि मैनू दर्शन दे दियो, ते साहब इको गल कहिंदे ने नए मलेश को दर्शन देना, इस मलेश नूं असी दर्शन नहीं देना। साध संगत इथे उन्हें धक्का जोरी करन दी भी कोशिश कीती, पर गुरु हर कृष्ण साहब ने परवाह नहीं कीती। अज उस दिल्ली दी धरती ते चेचक दा रोग चल पिया है, लोक बीमार ने, पर मेरे गुरु हर कृष्ण साहब जदों कोई इन्हां दे दीदार करदा है उहदा रोग कटिया जांदा है, सतगुरु दे चरणां दे जल नाल रोग कटिया जांदा है। खैर अज धन गुरु हर कृष्ण साहब महाराज उन्हां दे बंगले अगे औरंगजेब अद्धी घड़ी खलोता रहा है कि मैनू दर्शन हो जाण, साहब ने दरवाजे बंद करा दिते। साध संगत औरंगजेब ने फिर कहा है कि जे दर्शन नहीं देने मेरे बारे कोई शब्द कह दियो, ते साहब ने उत्थे एक बचन कहा मेरे गुरु नानक साहब दा, कहन लगे उन्हूं कह दियो तू कादा मान करना, क्या खादा क्या पहनदा होए, जामण नाही सच्चा सोए, क्या मेवा क्यों क्या गुड़ मिठा, क्या मैदा क्या मास, क्या कपड़ क्या शेष सुखाली, कीजें भोग बिलास, क्या नश्क लश्कर क्या नेब खवासी, आवे मैली वास, पर एक गल रखी कह दियो बादशाह नू नानक सच्चे नाम बिन सबे टोल बिन। सतगुरु इथे आप भी साहब उपर इस बीमारी ने हल्ला कीता है, कुछ विद्वान ता ए भी मानदे ने भाई गुरदास दूजा इन्हां दे माता कोल ने, सतगुरु अज अपने बिस्तर ते पए ने, किन्ने दिन हो गई उस कूकी ने दबिया होया है, ते जदो नेत्र खोलदे ने केवल प्यारे दी याद विच, ते अज कहिंदे ने नेत्र खोले ने बोले ने माता कोल, ते पुछदी है पुत्र अजे ता उम्र बिलकुल छोटी है, ते अगो साहब कहिंदे ने मां ए ना देख उम्र छोटी है, बस तू ए देख के गुरु नानक दी कृपा नाल उस मालिक दे चरणा नाल मेरी बण आई है, उम्र दी गल नहीं देख ओदे नाल बण आई है। सह फिर उस भूकी विच पै गए ने, कहिंदे ने सतगुरु ने फिर जदों नेत्र खोले ते सिख संगत खलोती सी, उस वक्त सिखां दे नेत्रां विच नीर सी, ते हथ जोड़ के पुछया सी दाता ऐस संगत नूं किस दे लड़ ला के चले हो, ते कवि संतो

0: करोड़ की राक्षस का बापड़ा पूजा ना रतन करोड़। आज ये बच्ची सुनती पई है उन्हें महापुरुषा ने पूछा किसी ने भी केड़ा गुरु साहब का बचन है जिदे विच उन्हां ने कहा कि हर एक नूं रिजक देन वाला एक परमेश्वर है।
1: तेते सुन कन्या दिल कीनो सोया वेस फल लिख कर दीनो।
0: कवि जी कहिंदे ने उत्थे फिर उस गुरमुख सिख ने श्लोक सुनाया जो गुरु नानक साहब उचार गए ने ते ए छोटी जी बच्ची ने ना उस वक्त ध्यान नाल सुनिया ते कहिंदे ने सुनदिया सार इस बच्ची दे मन उत्ते उस श्लोक ने इन्ना कु असर किया दृढ़ इरादा हो गया मना रब तो बिना दुनिया विच कोई रिजक देने वाला है। वो श्लोक केड़ा है कवि जी कहन लगे मैं उस श्लोक नू इत्थे

हम जैसे अपराधी अवर कोई इराखे, जैसे हम सतगुर राख लिए छड़ाए, जैसे हम सतगुर राख लिए छड़ाए, तू गुर पिता तू है गुर माता,

खामर उड़ते फिरते कोई बात ना पूछता। गुर सतगुर संग कीरे कम थापे, तन तन गुरु नानक जन केरा। जित मिले चूक।

इलाका बड़ा सोहना रमणीक है, ते जे कुछ दिन तुसी आके चरण पाओ ते मेरी धरती दे भाग जाग पैण। शायद ओदी पत्रकार नूं सुन के 500 सिख अपने नाल लै परिवार नूं लिया ते अंदर पहुंचे ने, ते मेदनी प्रकाश ने दुख रोया, महाराज मेरा जीना हराम कर दिता फतेह शाह ने। ते साहब ने श्रीनगर तो फतेह शाह नूं बुलाया ते राजा मेदनी प्रकाश दोनों नूं इकट्ठे बिठा के आपस विच सुलाह करा दिती। फतेह शाह ने जिस इलाके ते कब्जा किया सी उहने मेदनी प्रकाश दा ओ इलाका वापस कर दिता। दोनों ने गुरु की रज के सेवा की। इत्थे फिर साहब कुछ दिन ठहरे ते महाराज फिर विचित्र नाटक विच कहिंदे ने, देश चाल हम ते पुन भई शहर पावटे की सुध लही। कहिंदे ने असीं अपने देश नूं छड्डिया, हुण पंघाणी दा जिहड़ा प्रसंग दसम ग्रंथ विच उहदे आधार ते, देश चाल हम ते पुन भई शहर पावटे की सुध लही, कलंदरी तट करे बिलासा कलंदरी दर ते यमुना। कहिंदे ने यमुना नदी दे कंढे बैठ के असीं कई खेड खेडियां, उत्थे रब की याद भी जुड़े। जेड़ा तुसी सवेरे नितनेम विच जाप सह पढ़दे हो ना कि नमस्तवंग अकाले नमस्तवंग कृपाले नमस्तंग अरूपे नमस्तंग अनूपे, ए 199 छंद ते 22 199 बंद ते 22 छंद ए साहब ने पौंटा साहब की धरती ते बैठ के उचारे। जेड़ी चौपाई पढ़ने परणवो आदि एक अंकारा जसल मैयल कियो पसारा, ए पौंटा साहब की धरती ते उचारी। सवैये पढ़ने श्रावक शुद्ध समूह सिधान के दीनन की प्रतपाल करे, यह उस धरती ते उचारे। 33 सवैये जागत जोत जपै निशबासुर, 20 कबित खूक मलहारी गद गदा विभूतारी। ये सारी बाणी जेड़ी है अकाल की उस्तत विच मेरे गुरु गोबिंद सिंह ने यमुना के कंढे ते बैठ के उचारी। साहब कहिंदे ने, देश चाल हम ते पुन भई शहर पावटा की सुध लई, कलंदरी तट करे बिलासा अनक भांत के पेखे तमाशा। उथे फिर साहब ने एक जिक्र किया, कहने तय के सिंह घने चुन मारे सिंह दर ते शेर। कहने ने वह शेर जेड़े लोगों के घर पशुआ जिया का नुकसान करते सन, गुरु गोबिंद सिंह कहते ने एक नहीं भावे उथे गुरुद्वारा पौंटा साहब ने एक ही शिकार कर दिते शेर का शिकार किया। पर विचित्र नाटक के मुताबिक साहब कहते ने तय के सिंह घने चुन मारे, चुन चुन के वगार वगार के जेड़े शेर सन उन्हां शमशेरां दा गुरु गोबिंद सिंह ने मुकाबला करके आप उन्हां दा शिकार कीता। हालां उम्र चढ़दी जवानी विच ने तैं के सिंह घने चुन मारे, होर की मारिया रोज रीश बहु भांत पधारे, जेड़े रिच सन रोज सन जंगली जानवर बघियार सन, चुन चुन के उन्हां नूं घेर के शिकार कीता। कहिंदे ने जदों असीं अजे उस धरती ते बैठ के रब दी सिफत ते खूनखार जीवां दा मुकाबला करदे पैसा, उस वक्त फतेह शंभ कोपा तब राजा लो परा हम शुभ दिन काजा। कहिंदे ने जिस फतेह शाह दी सुलह कराई बगैर मतलब तो कहिंदे ने गुस्से विच आ गया मजबूरन, कहिंदा गुरु गोबिंद सिंह सच्चा पातशाह मैनू उत्थे जंग करन वास्ते तैयार होना पिया। इथों मुढ बजदा पंघाणी दे जुद्ध दा ध्यान देना कि फतेह शाह मैं अर्ज की ओदी बच्ची भीम चंद के लड़के नल मंगनी हुई है, बरात गई 22 धार दे राजे भीम चंद की बरात भी शामिल हुए बच्चे दी। पौंटा साहब के घाट तो इन्होंने निकलना सी, हजूर ने 12 दिनों विच पौंटा साहब का किला तैयार किया। जिन्ने भी सिख सन इत्थे आए इसे पौंटा साहब की धरती से संडौरे पिंड का रहने वाला पीर बुद्धू शाह गुरु गोबिंद सिंह के चरणा भी जुड़िया, जिदा असली नाम सी सैयद बदरुद्दीन। सैयद बदरुद्दीन ने मत्था टेकिया ते पहला सवाल किया सी गुरु गोबिंद राय जी नूं, अल्लाह नाल मिलाप हो सकता है? साहब ने कहा एक खिन दे अंदर। कहिंदा फिर किवें? महाराज कहिंदे ने जदों दूश दवाई दवैश दा दुई दा हौमे दा पर्दा उतर जाए पीर जी उदों इस तरह मिलाप हुंदा जिवें रात तो बाद दिन चढ़ जांदा, एक खिन लगदा। इत्थे पीर गुरु गोबिंद सिंह दे चरणा दा मुरीद बन गया सी। इसे पौंटा साहब दी धरती ते पीर बुद्धू शाह ने औरंगजेब दे कढ़े होए 500 जिहड़े पठान सन, इन्हां विच्चों 5 जरनैल सन, हयात खान निजाबत खान भीखन खान उमर खान काले खान, ये 5 जरनैल ते 500 इन्हां दे साथी साहब गुरु गोबिंद सिंह दे चरणा विच पीर बुद्धू शाह लैके आया सी। कहिंदा महाराज इन्हां पठाणा नूं